दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना, मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना। ये वक्त तुम पे आ जाए प्यार में तो ये गीत गाना।

0: गुलजार नार सिंगार करुण खूप नटली अहो गुलजार नार सिंगार करुण खूप नटली
1: चले चमकत।

0: जैसे मुझसे माधो छीन लिया गया छोटे सरकार, वैसे एक दिन आपकी सबसे प्यारी चीज आपसे कुदरत छीन लेगी।
1: खुद को छुपाने वाले

0: Batado?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

उठ जाऊं बिस्तर से, कब जाएगी गरीबी मेरे घर से, कब जाएगी गरीबी मेरे।

0: तुम्हें नहीं मानने दूंगी राजा।
1: किसे नहीं मानने दूंगी? ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तक तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

अरे हम दम है अगर हम तो तुम्हें गम क्या है, मेरे होते हुए ये सांस है क्यों सर्द तेरा, ये जहां गर्द जहां मर्द है हम दर्द तेरा।

0: तखलिया, इस खूबसूरत मौके पर राजकुमारी को आप लोगों की दखल अंदाजी हरगिज हरगिज पसंद नहीं।
1: इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
0: सुना तुमने, इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
1: देखते क्या हो, गिरफ्तार कर लो इसे।
0: देखते क्या हो, गिरफ्तार कर लो मुझे। सुना नहीं, राजकुमारी कह रही है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, वो मुझे यही रखना चाहती है।
1: क्या
0: इतना प्यार हो गया है मुझसे पहली मुलाकात में? अब तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये खुशखबरी मैं अपनी माता जी को सुना देना चाहता हूँ कि मैंने अपने लिए बहुत खूबसूरत दुल्हन चुन ली है।
1: बदतमीज।
0: शुक्रिया। अच्छा सुनिए, वो मेरा पटका आपके पास रह गया है, जरा संभाल के रखिएगा, फिर आके ले जाऊंगा।
1: मारो इसे।